अंत लय छिड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भारपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालेओ जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया। सो दर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परी स्यों कही है केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतन

सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए

रात जिन दिन कर कह की ती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जानू सतगुरु सतपुरखा बिनो करूं गुरपास हम कीरे किरम सतगुरु शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मुको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर।

तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा।

पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पाट पाट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर्त तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी

निकट नह है, रक्षा हुई ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई, दुष्ट छाह छवस कै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन

आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, सब दोता गाव हरि केरा, मन जिनी बसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया।

अग्नि उदर माही। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पाओ जल बिकम सगाहो गुर सब दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मह एहो कुन गुण गोविंद गाहे।

आराधना जिहवा जप गुरु नाऊ नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाऊ सतगुरु सेती रतिया दरगह पाइय ठाऊ कहो नान कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग में उत्तम काडी है विरले के महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

शासन जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग के सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दयावता है सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाह ने पितरात्म स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दाते अंतर के खालसा से बोलो जी। वाहेगुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां जपियां जो नाम जपिया वन चक्या देख चलाई तेग वाहे देख ढिड़की दतना प्यारे सजारा नहीं कमाई दाते अंतर के बोलो जी। वाहेगुरु जन्ना सिंघा सिंगड़िया धर्म है सीत दिते पंच पंच पाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया से चढ़े आड़ने चराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म निहार सिक्खी से केसर सत्सा संग दबाया तेना नहीं कमाया जाते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्त गुरुद्वारे दाते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम के तार है ये आवर का सद का सर्व सुख है। जहां जहां गुरु खालसा साहब दचरिया है देव देव की फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु गुरु की बनवाह पंथ सदा शाही दताया जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब ढोर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपने पंथ छोड़िया सरदार श्री अठमाल दादा अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओर गुरु न्यासरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु अरदार पिता जी दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास हे की प्रभात जी आपके चरण कमला दरदास पिता जी आप बख्शी थी है आपके चरण पुत्र गुरबाणी सुखमी साहब संपूर्ण पाठ दिता है ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोध अरदास साहब पाठ से कृपा करो हो यहां भुलना चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रांत गुरबाणी का भाव सारिया संगतान हिरदय इंसान की कृपालता करो जी। अगो तो शोध पित्र बाणी चाली बाल बुद्धि बख्शिश करो गुरु गरीब नवाज आप दख्शिया दाता पुत्र कड़ाप शादी देगा तैयार कर हादसार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संगत रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आदि का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेचा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव प्रदेह रखा बख्शिश करो जी। तंत्र ग्रंथ तार पिता जी आपके चन कमला ददान दार जी आज बख्शिश हो 1984 में गरीब नवाज उस समय जालम सरकार ने तोपा गरीब नवाज दरबार साहब हरिमंदर साहब जी से हमला किया दार जी उस वे संत बाबा जरनैल सिंह जी अपने साथी समेत अपने प्यारे सिंह समेत तार पिता जी आप जी चाना चौक जी ने गुरसिखी पातशाह जी अब हरिमंदर साहब जी आप कायम रखने वास्ते राखी करने वास्ते तार जी जाना कुर्बान कीतियां लड़ते शहीद होते पातशाह जी संत जरनैल सिंह जी अब उन्होंने साथियों दी गरीब नवाज सारे आत्मा की शांति वास्ते गरीब नवाज समूह संगत अरदास बेनती कृपा दतार उन्होंने आत्मा अपने चरणा नवाज बख्शो ठंड बख्शो हवा गाँव में बचा के दिता जी पिछले उन्होंने परिवारों की आप रखा करने की बालता करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा दतार मेहर करो अब उन्होंने इस दर्शाए मार्ग में गरीब नवाज संतों ने इस पाए पूरे चलने वास्ते समूह संगत खालसा पंथ अज नौजवान पीढ़ी दता पिता जी उन्होंने तो सिक्ख्या लैन वास्ते गरीब नवाज बख्शिश करो समर्थ बख्शो भावना दाल बख्शो अभी सदा गुरसिखी वास्ते गरीब नवाज तत्पर रहने वास्ते कृपालता करो दतार जी मेहर करो दतार जी आप दख्शिया दातों के नगर तुर सेवा जी प्रवान करने गरीब नवाज आप चरना सेवा करने सारे ढैरी संघा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकर बख्शो अभी सदा ही तरह अपने चरना सेवा की भावना कृपालता करो गरीब नवाज अमृत वे तो लैके दाते आई हैं साह संगत जाल जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत का दर जी तेरे फुल भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो सिखों खालसा बंधु एकता भाग प्यार जी बच्चे कर तत्व लाल बख्शो चरण जोड़ो करवाने प्यारों की बालता करो जी। गुरु गरीब नवाज
ਦੂਰ ਦੁਰਾਜ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਲੋ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਉਤਾਰਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਘਰ ਇੱਕ ਚਰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਸ਼ਕਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਘਰ ਚ ਵੱਧ ਵਕਤ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤਰ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਿਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿਤਰ ਗੁਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਥਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾਵਾ ਤਿਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਦੀ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਬਣਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਬਰਗਰ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ

दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराही तेहा हौ करी वखियान। बेसमार अथाह अगंत अतुलै ज्यों बलावहुं त्यों नानक दास बोले। वाहे गुरु जी सलोक महला पंजवां। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रेवण का तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रेवण का तो आओ हमारे पास। महला पंजवां मुआ जवंदा पेख जीवन दे मर जान।

जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस न व्यापाई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कह न जाई सच सह अडोल सिद्ध साधिक ज्ञानी ध्यानिया

आए, काट काट सब बोलै, रिजक संभा है सब सै, क्या मानस डोलै, गहर गंभीर अथा तू

아우, 그렇게 쌓친 거지. 그러나 마하는 세다노. प्रणाम कर दिया है, नमस्कार कर दिया है, अपना कीमती समा करके गुरु दरबार पहुंच के गुरु चरणा नाल में जुड़ बैठे हैं। गुरु सिखा की हर तोड़ दे हम पापी पी गत पाए, हो सद के इतना गुरु सिखा सतगुरु नो मिल आप गवाए, जिस प्यारे से नेहो तिस आ गए मर चलिए त्रिक जीवन संसार ताके पाछे जीवना। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद, नित्ता प्रति किन्ने ही जीव किसी ना किसी बहाने अनुसार इस संसार तो जा रहे ने किन्ने ही आ रहे ने। जिहड़ी उस मालपुरु दे नाल जुड़ के शहीदियां पांदे हन सतगुर पाछे कहने के पाई कौम फिर उन्हों का ऋणी है करजाई है उन्होंने याद करता है। सो आओ अगला शब्द सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राखियो चीत।

सगल समग्री तुम रहे सूतर धारी तुम ते हो सो आग्या तुमरी गत मित तुम ही नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए रंगत गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस दिठे शब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरया करना उन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजाद चाली मुकतियां जपिया टपिया जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देग कंडित कीता तना प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी से बोलो जी जिन्हां सिंघा सिकणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आ रहे चढ़ाए गुरुद्वारा की सेवा ने कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी के सस्वत सत्संग निभाई तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान रखे बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जां जां खालसा जी साहिब तहत हर शरिया देखते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल बल बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशना चौंकिया झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पत कर आखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ के सदा साज दार जी श्री ननकाणा साहब चोर गुरुद्वारे गुरधामा जिन्हों तो पंथ नु विछोड़िया गया कुल दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी ने बख्शो हिन माण्यो के मान ताण्यो के ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी के चरणा च अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश होई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ी वार गुर शब्द दियां विचारां उपरंत अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन होए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया कीर्तन करदिया विचारां करदिया आप जी की सेवा संभाल करदिया हाइयां बेअंत फुला बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तुम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदिया ते वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बेन संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हां जाप सरवण कर दिया आप जी का धन्यवाद करते हैं बिंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादार सिंह वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी सारी संगत की हारी तर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया में बरकत पाया श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनी है जी आप जी के दर घर के सेवक दुर्गा बीरद राजू समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़ती कला की अरदास बेनती करद गुरु के लंगरां वास्ते 201 डालर माया भेटा कर देन कृपा करनी सेव परिवारां दी भेटा दर प्रवान करनी परिवार नूं दे रुगता तंदुरुस्तियां प्रदान करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी भाई सुशांत सच देवा वाहिगुरु जी दा शुकराना करदिया गुरु घर वास्ते बेंत माया भेटा कर देन कृपा करनी सेव परिवारां दी भेटा दर प्रवान करनी परिवार नूं चढ़दी कला बख्शिश करना दर घर दे सेवक बीबी बलविंदर कौर संधु परिवार की चढ़दी कला की अरदास बेनती कर देन कृपा करनी सेव परिवार नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी परमजीत सिंह जी बीबी जसवंत कौर जी देर उगता वास्ते अरदास बेनती कर देनी कृपा करनी सेव परिवार नूं देर उगता तंदुरुस्तियां प्रदान करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी केशव शरण सिंह दी चढ़दी कला वास्ते परिवार वालों अरदास बेनती कृपा करनी सेव परिवार नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी
ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰਹੋਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਅੱਗੇ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ

नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सुखमनी सुखम मृत प्रभ नाम
1: जना के मन बसराम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभ कै सिमरन दुख जम न सह
0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे
1: प्रभ कै सिमरन अंधन जागे
0: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापे
1: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग
1: सर्वनदान नानक रंग
0: प्रभ कै सिमरन रिद्ध।

0: से पर उपकारी।
1: प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी।
0: प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे।
1: प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे।
0: प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता।
1: प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता।
0: प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरे।
1: प्रभ को सिमरह बसे अरनेरे।
0: संत कृपा ते अन दिन जाग।
1: नानक सिमरन पूरे।

0: एक बार
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
0: महादास विसर दीवे
1: अगन माहे हो मत प्राण
0: कन कैस हुए भरपूम दान
1: जौली कर्म करे बहु आसन
0: ज्ञान मार्ग संयम साधन
1: निमक निमक कर शरीर कटावे
0: कभी हो मैं मैल न जावे
1: हर के नाम समसर कछ नाही
0: नानक गुरमुख नाम जत गत पाहे
1: मन कामना तीर्थ देह छुटे
0: गर गुवान न मन ते उठे
1: सोच करे दिन सर रात
0: मन की मैल न तन ते जात
1: इस देही को बहु साधना करे
0: मन ते कबू न बिख्या टरे
1: जल तो वह बहु देह अनीत
0: शुद्ध कहाँ वे काची पीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच
0: नानक नाम उदरे पत बहुमूच
1: बहुत से अनप जम का भव व्यापे
0: अनक जतन कर तिस ना त्रापे
1: भेख अनेक अग्नि नहीं बुझे
0: कोट पाप दर गए नहीं सिजे
1: झूठ सनाही उपयाल
0: मोहे व्यापे माया जाल
1: अवर करतूस अगली जम डाने
0: गोविंद भेन मन तिन नहीं माने
1: का नाम जब दुख जाए
0: नानक बोले सह सुवाए
1: चार पदार्थ

0: अष्टपदी
1: हे प्रसाद शक्ति अमृत खाए
0: इस ठाकुर को रख मन वाले
1: हे प्रसाद सुगंध तन लावे
0: इसको सिमरत परम गत पाव है
1: प्रसाद बसे सुख मंदर
0: इसे सदा मन अंदर
1: प्रसाद ग्रह सुख बसना
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना
1: हे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याय त्यावन जोग
1: हे प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे
0: इसे त्यागतवर लुभावे
1: हे प्रसाद सुख से सुजय
0: मन आठ पहरता का जस गावी
1: हे प्रसाद सबको माने
0: मुक्ता को जस रसन बखाने
1: हे प्रसाद तिर रहता धर्म
0: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
1: प्रभु जी जब दर गए मान पावे
0: नानक पद से ती कर जावे
1: हे प्रसाद आरोह कंचन देही
0: निवलाभ तिस राम स्नेही
1: हे प्रसाद रौला रात
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: हे प्रसाद तिर सकल सिद्ध ठाके
0: मन सरणी पर ठाकुर प्रभुता कह
1: प्रसाद तुझको ना पूछे
0: मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे
1: हे प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: हे प्रसाद आपूखन पैरी जे
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय
1: हे प्रसाद असव हस्त सवारी
0: मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी
1: हे प्रसाद बाग मिलत ना
0: राख परोए प्रभु अपने मना
1: तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत सह त्याई
1: किसे त्याई जो एक लख है
0: उहां नानक तेरी रखे
1: हे प्रसाद करे पन बोधन
0: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
1: हे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभु को सा सा चितारी
1: हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप
1: हे प्रसाद तेरी नीकी जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: हे प्रसाद तेरी पत रहे
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे
1: हे प्रसाद सुने करनाद
0: हे प्रसाद पिख है विस्माद
1: हे प्रसाद बोले अमृत रसना
0: हे प्रसाद सुख सह जे बसना
1: हे प्रसाद हस कर चले
0: हे प्रसाद संपूर्ण फल है
1: हे प्रसाद परमत पावे
0: हे प्रसाद सुख सह सुमावे
1: ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो
0: गुरु प्रसाद नानक मन जागो
1: हे प्रसाद तू प्रगट संसार

0: कर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध के संग मिटे विमान
1: साध के संग प्रवटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा वरने कौन पुरानी
1: नानक साध की शोभा प्रमाय सम्मानी
0: साध के संग गुचर मिले
1: साध के संग सदा प्रफुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग रस पंचा
0: साध संग हुई सब की रेन
1: साध के संग मनोर बैन
0: साध के संग न कत हूँ तावे
1: साध के संग साध संग अस्तित्व मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग किस्यो नहीं बैर
1: साध के संग न बिगा पैर
0: साध के संग न ही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग न ही होता
1: साध के संगत जे सब आप
0: अपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग न कब हूं तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस्त गो चिर लह
1: साधु के संग जर सहे
0: साध के संग बसे थान उचे
1: साधु के संग मैल पहुंचे
0: साध के संग दिड़े सब धर्म
1: साध के संग पाए साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के करवो
0: साध के संग सब कुल उधर है
1: साध संग सायन मीत कटम नारे
0: साधु के संग सो धन पावे
1: संते सबको बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग सो बासुर देवा
0: साधु के संग पाप लायन
1: साध संग मत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सफल जन्म
0: साध के संग नहीं कछ का हाल
1: दर्शन भेट तो होत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग यहाँ वहाँ सुहेला
1: साध संग विचरत अर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग न बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: नान कुदरे साध संग रसे
0: साध के संग सुनो हर नाव
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर नस्तरे
0: साध के संग लग गया प्रभ मीठा
1: साधु के संग कट कट डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध बिटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जाने
1: जेता सुने तेता बखियाने
0: साध की उपमा त्यो गुण

0: जैसे सूर सर्व को सोख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य मान
0: जैसे राज रंग को लागे तुलपवार
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक
0: यों बसदा को खोदै को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक जो पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तारू पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
0: मन अपना है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
0: नानक जिन पर व्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टम मृत बरसी।

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माही,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन विकाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को

0: नानु अपर सगल निष्कार अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: परत्र रूप न पिखे नेत्र
1: कार की टहल संसंगेत
0: कर न सुने काहू की निंदा
1: सत्य जाने आप को मंदा
0: गुरु प्रसाद विख्या पर हर
1: की वासना मन ते डर
0: इंद्री जित पंच दुख ते रहत
1: नान कोट मदे को ऐसा परस
0: वैष्णु सो जिस ऊपर सुख प्रसन्न
1: विष्णु की माया तो है पिन
0: कर्म कर तो वह नहीं कर्म
1: इस वैष्णु का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बचे
1: केवल भगत कीर्तन संग राचे
0: मंत्र अंतर सिमरन गोपाल
1: प्रभुत कृपाल
0: आप निडैव रह नाम जपावे
1: नानको वैष्णु परमत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: मंत्र बिनसे सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल कुवे
1: भक्ति की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन प्रभुत है
1: राम नाम आत्मे सोदे
0: राम नाम सार रस पीवे
1: पंडित के उदय जग जीवे
0: हर की कथा हृदय

0: ये जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित कर राके तैसा तिन्नाओ
1: आपे करण करावन जोग
0: पावे सोई फनोग
1: पसरे आपे अंत तरंग
0: रखे न जाए पार मुक्त के रंग।

0: रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थवासी
0: कई कोट वन प्रमय उदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते
0: कई कोट तपीश्वर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान तारे
0: कई कोट कब का विचार है
1: कई कोट नवदन नाम ते आवे
0: नान करते कंत न पावे
1: कई कोट पय अमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अपेगा।

0: कबहू ऊंच नीच मह बसै
1: हर करंग से
0: कबहू निंद चिंद व्यवहार
1: उबकास प्याल
0: कबहू बेता ब्रह्म विचार
1: नानक आ मिलावनहार
0: कबहू नृत्य करै बहु भात
1: रहे दिन रात
0: कबहू महा क्रोध विकराल
1: सर्व की होत रवाल
0: कबहू हुए बह बड़ राजा
1: पेकारी नीच का साचा
0: कबहू अपकीर्त मह आवे
1: कबहू भला भला कहावे
0: ज्यों प्रभु राखै तिव ही रहे
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबहू हुए पंडित करे बखियान
1: मोहन धारी लावे ध्यान
0: कबहू तट तीर्थ स्नान
1: कबहू सिर साधम ज्ञान
0: कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया
1: जोन परमे परमिया
0: नाना रूप जो सुहागी दिखावे
1: जो प्रभ पावे ते मन चावे
0: जो तुझ पावे सोई हुए
1: नानक दूजा वरना कोई
0: कबहू सा संगत

0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दर गह कहो कैसी गवे
1: आपस को जो पला कहावे
0: किसे पलाई निकट ना आवे
1: सर्व की रेन जाका मन होए
0: कहो नानकता की निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझसे कुछ होए
0: तब इसको सुख ना ही कोए
1: जब जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्व जोन में फिरता
1: सारे को वैरी मीत
0: तब लग निश्चल ना ही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय दे

0: छह पावे
1: भोग भी क्या कह करे
0: नेत्र पतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ वृत्ति सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बट भागी किसे प्राप्त होए
1: करण करावण आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: करण करावण करने हार
0: इसके हाथ कहा विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो कुछ किनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब कह संग
1: जय देखे करे विवेक
0: अपैक अपै अनेक
1: वरना बिनसे अब न जाए
0: नानक सद ही रहा सुमाए
1: जैसे समझे आप
0: आपे रचिया सब कै साथ
1: आप किनो अपन विस्तार
0: सब कछ उसका करने हार
1: ते पिन कहो किछ होए
0: हां थान तनंतर एक कै सोए
1: अपने जलत आप करने हार
0: कौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माए
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने वख्यानी
1: सच सच सच सब कीना
0: ओट मदे किने बिरले।

0: संत के दुखन ते मुख पवै
1: संतन के दुखन काग जोल वै
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिक जोन क्रमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै
1: संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत के दुखन नीच चाए
0: संत दुखी का थाउ को नाही
1: नानक संत पावे ताओ विगत पाए
0: संत का निंदक महा अतताई
1: संत का निंदक खिन टिक न पाई
0: संत का निंदक महत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज तेहीन
1: संत का निंदक दुखियार दीन
0: संत के निंदक सर

0: के दुखी को डाल लग गए,
1: संत के दुखी को सब त्याग गए,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा विकारी,
0: संत का दुखी जन में मरे,
1: संत की दुख ना सकते तरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाऊ,
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज ना मूचे,
0: संत का दुखी उद्यान परमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थुथा,
1: जो सांस बिना मृतक की लोता,
0: संत के दुखी की जड़ किच नाही,
1: अपन बीज आप ही खाए,
0: संत के दुखी कवर न रखन हार,
1: नानक संत पावे ता लय वार,
0: संत का दुखियों बिल लाए,
1: जो जल भी हूण मछली तड़पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पाव किंद नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुट्टे के ला,
1: जो वार तिल खेत माहे दोहिला,
0: संत का दुखी धर्म से रहत,
1: संत का दुखी सदमितिया कहत,
0: कीर्त निंदक का तुर ही पया,
1: नानक जो सुभावे सोई तिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी ना मरे न जवाइए,
0: संत के दुखी की पुजे नया सा,
1: संत का दुखी उठ चले नया सा,
0: संत के दुख न त्रिष्ट कोई,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: पया कीर्तन मिट कोई,
1: नानक जाने साचा सोए,
0: सब घट दिसक्यो करने हार,
1: सदा सदा दिसको नमस्कार,
0: रब की उस्तुत करो दिन रात,
1: से आवो सास ग्रास,
0: सब कछ वरत तिस्कार।

0: नानक दुख भरम पौ जाय। अष्टपदी
1: मानु की टेक वृत्ति सब जान,
0: एवन कौ एक भगवान
1: जिसके दिए रह गाए,
0: बहुर न तृष्णा लागे आए।
1: रखे को आप
0: मानुक कह किस नाही हाथ,
1: कंभू सुखोए
0: इसका नाम रख कंठ परोए।
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए।

0: दुख सुख प्रभ देव नहार
1: त्याग दुध से चतार
0: जो कछ करे सोई सुख मान
1: उल्ला काहे प्रे अजान
0: कौन बसताई तेरे संग
1: असलोभी पतंग
0: राम राम जप हृदय माही
1: नानक पद से ती कर जाहे
0: विश्वकर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: तजब मान लिहु मन मूल
1: राम नाम हृदय में तो

0: अष्टपदी
1: चरण सत सत परसन हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत भेखण हार
0: नाम सत सत ध्यावन हार
1: आप सत सत सतारी
0: आपे गुण आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रवक्ता
0: सुरत सत सत जय सुनता
1: पूजन हार को सत सोए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मान्या
0: करण करावन तिन मूल पछानिया
1: जाके हृदय विश्वास प्रवाया
0: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: ऐते निरपो बसाना
0: जिसते उपजिया तिस माहे समाना
1: दस माय ले बस गडाई
0: ताको भिन्ना कहना जाई
1: बुझे बुझण हार वेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को

0: की सर पर रखे,
1: अपने दास को दे बढ़ाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आपत रखे,
0: ताकि गत मित कोई न लखे,
1: आपके सेवकों को न पूछे,
0: प्रभु के सेवक उचते उचे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया,
1: निकी किरी मैं कर रखे,
0: भस्म करे लश्कर कोट लखे,
1: इसका सास न करत आप,
0: ताको राखत दे कर हाथ,
1: मान जतन करत बात,
0: इसके कर्तव्य

0: बार बार प्रोजेक्ट ये
1: भी अमृत्यु मन तंत्र पिए
0: रतन जिन गुरु को पाया
1: तिस किच अवर नाही दृष्टाया
0: नाम तन नामो रूप रंग
1: नामो सुखर नाम का संग
0: नाम रस जो चल तने
1: मन तन नाम है नाम सुमाने
0: मूर्त वैड तो सोबत नाम
1: कहो नानक जन कै सदकाम
0: बोलो जाजे बा दिन रात
1: रवि अपने जन की नींदात
0: करे भगत आत्म के चाहे
1: रवि अपने स्यों रह समाये
0: रव अपने
1: जो हुआ हो
0: जो हुआ हो सो जाने
1: रब अपने का हुक्म पहचाने
0: की महिमा कौन बखानो
1: जिसका गुण कह एक न जानो
0: आठ पैर प्रभ से हजूरे
1: कहो नानक से जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले
1: मन तन अपना तिन जन देहे
0: तिन जन अपना प्रभु पुछाता
1: सो जन सर्व थोक का दाता
0: इसकी शरण सर्व सुख पावे।

0: जिसके संसिख उतरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करे प्रतपाल
1: शिव को गुर सदा दयाल
0: सिख की गुर दुरमत मल हिरे
1: गुर वचनी हर नाम उचरे
0: सतगुर सिक्के बंधन काटे
1: गुर का सिख विकार ते हटे
0: सतगुर सिक्को नाम धन दे
1: गुर का सिख बड भागी है
0: सतगुर सिक्का हलत पलत सवारे
1: सतगुर सिक्को जी नाल समारे
0: गुर कै गृह सेवक जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में सहे
0: आपस को कर कच ना जनावे
1: भगवान नाम रे सत्य आवे
0: मन बेचे सतगुर के पास
1: सेव के कार्य रास
0: सेवा करत हुए निकामी
1: को प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिस

0: दाता
1: आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता
0: ब्रह्म है जन जन में पार ब्रह्म
1: एक आप नहीं किच भरम
0: सियान पलया न जाइये
1: नानक ऐसा गुरबट भागी पाइये
0: सफल दर्शन सब तेखत पुनीत
1: परस चरण गत निर्मल रीत
0: भेटत संग राम गुण रवे
1: की दरगह गवे
0: सुनकर बचन करन आघाने
1: मन संतोख आत्म बुत्याने
0: पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र
1: दृष्ट पेख संत
0: अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस लय मिलाए
0: जे बाए कुष्ट अनेक
1: सतपुरख पूर्ण विवेक
0: आहू बोल न पहुंचत प्राणी
1: अगम गोचर पव निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई
1: काकी कीमत किने ना पाई
0: अनिक भगत बंधन नित कर है
1: चरण कमल हृदय सिमरै
0: सद बलिहारी सतगुरु अपने
1: नानक जिस पर साध सा प्रभ जपने
0: एहो हर रस पावे जन कोए
1: अमृत पीवे अमर सो होए
0: उस पुरख का नाही कदे विनाश
1: जाके मन पर डे गुण सास
0: आठ पैर हर का नाम ले
1: सच उपदेश सेव को दे
0: उमाया के संग न लीप
1: मन में रखे हर एक
0: अंधकार दीपक परगासे
1: नानक परम मोह दुख तैते नासे
0: तब तुम्हारी ठाड वरताई
1: अंध पिया दुख न ठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेशे
1: साधु के पूर्ण उपदेश
0: पाओ चुका निर्भव हे बसे
1: सगल व्याध मनते कह नसे
0: जिसका सातिन कृपा तारी
1: संग जपना मरारी
0: खित पाई चुके भ्रम गवन
1: नानक सरवन
0: निर्गुण आप सरगुण पियो ही
1: जिन सगली मोही
0: अपने चरित प्रभाव बनाए
1: कीमत आपे पाए।

0: चारु अष्टपदी
1: संत जनामिल करो विचार
0: एक सिमर नाम आधार
1: और पाप समीत विसारो
0: चरण कमल रिद मह उरतारू
1: करण करण सो

0: तन को चार कुंठ सावे
1: सो तन हर सेवा ते पावे
0: सुख नुत वचे मीत
1: सो सुख साधु संग परीत
0: शोभा को करे भली करनी
1: सा शोभा भज हर की शरणी
0: मन तो पावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर अवखद लाए
0: निदान में हर नाम निदान
1: जप नानक दरगह परवान
0: मन पर बोधो हर के नाए
1: दादिस्तावत आवे ठाए
0: विघन न लागे कोए
1: जाके हृदय बसे हर सोए
0: शांति ठंडा नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: पूर्ण होए आस
1: भक्त पाए आत्म प्रगास
0: हित कर जाए बसे अविनाशी
1: कहो नानक काटी जम पासी
0: सत विचार कहे जन साचा।

0: प्राण आधार
1: पाव न छुटन हारे
0: सिमृत शास्त्र वेद विचारे
1: भगत करो मन लाए
0: मन वंचित नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरे तना
0: तू क्या लपटावे मूर्ख मना
1: उम्मीद कटम्बर बंता
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: रथ सुवारी
0: झूठा डंप झूठ पासा।

0: कमल हुए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माहे,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे,
1: जपो अबरा नाम जपाओ,
0: सुनत कहत रहत गत पावो,
1: सार पूल सदर को नाओ,
0: सह सुभाए नानु गुन गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतरस मैल,
0: बिन सजाए हो मैं बिख फैल,
1: होए जिंद बस सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम सुमार,
1: साठ सियाणम सकली मना,
0: साध संग पावह सच तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: इहा सुख दर गए जयकार,
1: सर्वनंतर एको देख,
0: कव नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको साला है,
0: एक सिमर एको मन आहे,
1: एक गुण गाओ अनंत,
0: मंत्र जाप एक भगवंत,
1: एको एक कर आप,
0: पूर्ण पूरे हो प्रव्याप,
1: एक राज प्राच गए,
0: अनिक विस्तार एक ते भए, एक अराध प्राचित गए,
1: मंतन

0: चरण उपेश परे शरण आन सब त्याग
1: उपजे चाओ साध कै संग परे शरण आन सब त्याग
0: अंतर प्रगा संदिन लाग
1: बड भागी जपया प्रभ सोए
0: नानक नाम रते सुख होए
1: सेवकी मनसा पूरी भई
0: सतगुरु ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभ होयो दयाल
0: कीनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुक्त जन भया
0: मरण दुख परम गया
1: इच पुन्नी सरदा सब पूरी
0: रब रहा संग संग हजूरी
1: जिसका साथिन लिया मिलाए
0: नानक भक्ति नाम समा

0: विसरै जी अगन मह राख है
1: प्रसाद को बिरला लाख
0: सो क्यों विसरै जी बिखते काढ़ है
1: जन्म जन्म का टूटा गाढ़े
0: गुरपूरै तत है बुझाया
1: अपना नानक जन त्याया
0: साचिन संत कर हुए हुकाम
1: आम त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अपना नाम जपावो
0: भगत पाई तरिय संसार
1: बिन भक्ति तन होसी शार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम
1: मूढ़त जात पावे विश्राम पाए विश्राम
0: सगल दुख काहू उतनास
1: नानक नाम जपो गुणतास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मन तन अंतर ही सो आओ
0: नेत्रो पेख दर सुख हुए
1: मन

सब जगत तराया जन कै संगचित आवै नाउ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन

0: असंख तप ताओ,
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास,
0: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार,
1: असंख सूर

0: पुरख सिख हमारे तारियन,
1: चुन चुन सतर हमारे मारिय,
0: आप हाथ दे मुझे अबरिय,
1: मरण काल का त्रास नवरिय,
0: जो सदा हमारे पश्चा,
1: श्री अस्तु जो करो रक्षा,
0: राख लो मोहे राखन।

0: तदरव ग्रंथ सुधारा सोइया।
1: पाही गहे जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो।
0: राम रहीम प्राण करान अनेक कहे मत एक ना मान्यो।
1: सिमरत शास्त्र वेद सपे पोपेद कहे।

0: मनो क्यों विसारिया ए वरदाता जे अगन में आहत पहुंचावे।
1: उसनो केहो कोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे।
0: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया।
1: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिया।
0: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
1: माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया।
0: जांच पाना जमया परवार भला पाया।
1: लिव छुड़की लगी त्रिशना माया अमर वरताया।
0: ए माया जित हर विसरै मो उपजै भाव दूजा लाया।
1: कहे नानक गुर प्रसादी जिना ले वलागी तिनी विचे माया पाया।
0: हर आप अमुलक मुल न पाया जाए।
1: मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए।
0: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए।
1: जसदा जीओ तिस मिल रहे हर वस मन आए।
0: पर आप अमुलक है पाक।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शिश करो हे निमाणिया दे मान सतगुरु निताणिया दे तान सतगुरु नियोटिया दी ओट गुरु गरीब नवाज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी ने कृपा की अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर आई समूह संगत नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते नदरो नदरे निहाल कीता आप जी का कोटान कोट शुक्र है गरीब नवाज अमृत वेले आप जी के पावन पवित्र सुंदर दरबार सजे सजे दरबार अंदर आप जी की अमृतमयी बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ नित निबाणिया दे पाठ संगति रूप विच कीते गए गरीब नवाज आप जी की अगाध गोद बाणी पढ़ दे आप जी के दासरिया पासों बेअंत बेअंत भुला हुई आप जी ने खिमा कर देनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना बेअंत संगता ने अमृत वेले हाजरिया भरिया भेटावा आप जी के चरणा विच भेट कीतियां कृपा करनी दर आई संगत दी हाजरी भेटा दर प्रवान कर दे सबना दरों घरों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना परिवारां विच सुख वरतौनी बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बेअंत संगतां वल्लों मीडिये दे माध्यम राहीं हाजरियां भरियां गईयां सेवावां भेजियां गुरमत अनुसार सभना दियां मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनियां बेअंत संगतां वल्लों गुरु के लंगरां विच सेवावां कीतियां जा रहियां सतगुरु जी तन मन धन दे नाल कीतियां सेवावां आप जी ने थाएं पाउणियां गरीब नवाज आप जी का पावन पवित्र फरमान है मरन मनसा सूर्या हक है जे होए मरह परवानू दे मां वक्त अनुसार जून दा पहला हफ्ता गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी आप जी के दरों घरों वरसाए हुए वीवीं सदी दे महान जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले अते तिन्हां दे समूह जथे वल्लों धर्म युद्ध मोर्चे नूं निभाउंदिआं होइआं सच्चे पातशाह धर्म दी पंजाब दी इज्जत पत अनक नूं बचाउंदिआं होइआं सच हक दे लई लड़दिआं होइआं अपनियां शहादतां दित्तियां गरीब नवाज इह सारा हफ्ता उन्हां महान शहीदां नूं समर्पित कीता गिआ है अज दे हफ्तावारी दीवान उन्हां दी याद विच मनाए जाणे हन गरीब नवाज आप जी ने कृपा करनी सिख पंथ दे उत्ते समूह संगतां दे उत्ते मेरा भरिया हथ रखना शहीदां वल्लों दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दे लई आप जी ने मत बुद्ध प्रदान करनी रहमत करनी इसे तरह शहीदां दियां यादां हिरदियां विच उकर के रखनियां गरीब नवाज कृपा करनी रहमता करनियां सतगुरु जी इस वक्त दीवाना दी संपूर्णता नूं मुख रखदे आप जी के हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरते गरीब नवाज कृपा करो दर आई समूह संगत नूं निवाज दे हुए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो अगले दीवान सजाउण दी आग्या होवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो

सो करता चिंता कर जिन उपाया जग जिस जुहारी स्वस्थ जिस दीवाना पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग।

फड़ फड़ बेड़ी पाई है फड़ फड़ गड़ी है खास पड़ी है जेते बस बस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आ

0: प्रवाणक निहोया पुला चुका दिखी मा ए दीवान उना महान शहीदानो प्रणाम है सरदा के फूल बेटन जिन्होंने ऐसी पावना ऐसी अरदास लेके जिस प्यारे से उन्हें हो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना फते प्रवान करिए जी वाहिगुरु जी की फते।
1: जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगन हमारे दया करो कुछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। 1984 के समूह शहीदों की याद में धन धन सर्व ग्रंथ साहिब के पावन सत्य इलाही दरबार दी हाजरी भर के इलाही बंड कीर्तन ते कथा सरवण करके रुझेवें समय रुझेवें परे जीवन विचों कुछ पलों नूं सफल बना रही परम सत्कार जो साध संग जीओ हां गुरां दी बख्शी वे फतेह सांझी कर लईए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब परशपाल सिंह जी ते उन्हां दा कीर्तन जथा जिन्होंने आप जी नूं इलाही बंड दी रस्मी ने कीर्तन सरवण करवाए ने उन्हां दा हार्दिक धन्नवाद जी। हुण आप जी नूं कथा सरवण करवाउणगे कोई इतिहास सरवण करवाउणगे 1984 का इतिहास सरवण करवाउणगे पंथ दे मान विद्वान ते कथाकार सरकार जो ज्ञानी सिकंदर सिंह जी जो श्रोमणी कमेटी बहुत साल इन्होंने प्रचार दे तौर पर काम किया है पंथ दे लई धर्म प्रचार का इंटरनेशनल धर्म प्रचार के इंचार्ज भी रहे। सो कुछ एक सूचनावां जी हुण पहला भी मैं सांझी की गल पर नवी संगत आ गई सो वह उस करके दोबारा दोहरानी पै गई हूँ जिहड़ा आपां दो मंजिला बना रहे हैं नॉर्थ साल से साउथ साल उस एक परिवार ने ऑफर की थी है बड़ी वधिया सुन लैनी आप जी ने सोचना फिर मैं की करना अपने बारे उन्होंने एक मिलियन डालर देने की ऑफर की थी है जी शर्त ना लाई है अज तो शुरू करके जिन्हें आप पैसे उस फंड पावे आप देवे संगत देनगियां उन्ने वो सानू देंगे वो दे बराबर जब तक टोटल एक मिलियन नहीं हो जाता। सो ये हुण आपां देखिए भी किन्नी छेती आपां एक मिलियन अपने वालों कर सकते संगतां वालों गुरु घर संगतां दा ना तो कमेटी का ना मेरा ना तेरा क्यों आपां तां इत्थे रहना नहीं गुरदे ने रहना इत्थे। सो देखिए भी किन्नी छेती बना सकते हुण उस विच हिस्सा पा के दसवंध कढ के हुण मैं अपने वल देखना अपने किसे वल देखना अपनी सेवा वल देखना मैं दूजे वाले देखना भी उन्हें जी देते तो मैनू की लोड़ देण दी ओ जी उन्हें अद्धा मिलियन देता मैनू की लोड़ नहीं इदा नहीं होना कम ये तो मैनू सोचना पैना दसवंध मैनू गुरु ने दिता मैं गुरु की बख्श लैनी है दसवंध अपना कढ़ना। सो इस करके कोशिश करिए अपना अपना हिस्सा पाउण दी गुरु की बख्श लैण दी। धन्नवाद इस सोचने का अगे चलीए सहज पाठ अपन सेवा के भले ही करी आरंभ किए उसके भोग 21 जून में पैणगे जी सवेरे 10 बजे मेन हाल च जिन्हें ने हाले नहीं नाम मैंने भेजा भेज दियो नंबर हैगा जी 408-712-4145 पर टैक्सट कर दियो अपना नाम से फोन नंबर तो सहज पाठ थोड़ा एक या दो तुसी पूरे कर लेने 21 तो पहले जून तो वो दस दौ कल गुरतक अधि देश तंत्र गुरु हरगोबिंद साहब जी का जी 15 जून है संगरांद हाड़ दी ते 16 तो आप कर रहे हैं शुरू सुखमनी साहब के पाठ शाम 7:30 तो 8:45 तक धन तक गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की महान शहीद दिन समर्पण जो 18 हैगी है पर आप मना रहे 18 भी तो 21 भी तो 18 तरीक न सिख हेरीटेज नाइट भी मनाई जा रही है जैंट जी बेसबॉल गेम 6:30 बजे टिकटा लैके जाने की कृपा करनी डॉक्टर अलंकार सिंह पटियाले वाले साढ़े पास आके कीर्तन करेंगे 28 जून न गुरमुख सैम बच्चों लग रहा जी 6 साल तो 15 साल का फ्री उस दाखिल कराओ बच्चों तो वह है तरीका नोट कर लो 13 जुलाई तो 17 जुलाई तक जी पिछे आना पै गया थोड़ा 26-27-28 हो रहा ब्याह पुरब का प्रोग्राम 3 दिन गुरु के ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੈਂਕਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ 1984 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ओ महान गुरु दी सिख जिड़ी की एडी वड्डी फौज दे नाल मैदानी जंग दे विच आपां वेखदे हां, जिस वेले कोई सूरमा जूझदा है वो फिर मन नूं डुलांदा नहीं है, ते अस्थान भी वो महान पवित्र अस्थान होवे जिसनूं

को ख्वार ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहि गुरु नाम जहाज है चढ़े तो उतरे पा जो शरदा कर सेम दे गुरु पार उतारना

0: अपनी सेवा प्रवान करने जी पुना चुका जी जमा आओ सतारे हो भाई साहब भाई रिशपाल सिंह जी रंगी जिते पासों पावन पवित्र कीर्तन सरवण करिए जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: धन गुरु नानक।

땅굴 얻은 데 말아서 제파셔 बहुत ही सोहने तरीके दे नाल सानू समझाना कर देन के भाई मनुख दा जन्म जिहड़ा है ये बहुत मुश्किलां दे नाल प्राप्त होया है। जे उस परमेश्वर ने रब ने तेरे ते कृपा करके तेनू ये मनुखा देही दित्ती है तो इस देही नू तू सफल करना है। जे दुनिया के माड़े कमां दे अंदर ही तू विचरदा रहा गलतान हुंदा रहा ते तू अपने इस जनू सफल नहीं कर पाएगा। अज अमृत वेले तो ही आपां सारे उन्हां शहीदां नू याद कर रहे हां जिहड़े सीगे 84 दे अंदर अकाल तख्त दे अंदर जिन्हां दे उत्ते हमला किया गया बेकसूर लोगों नू मारिया गया। सो आपां सारे ही उन्हां दे प्रति अरदास कर रहे हां बेनतियां कर रहे हां गुरु कृपा करन सारियां दे हाजरियां प्रवान करके लिखे चलान। आओ अगला प्रोग्राम सत्कारयोग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी आप जी ने कीर्तन लाई निहाल कर रहे ने। आप जी ने बड़े प्यार सत्कार नाल कीर्तन सुन दी कृपालता करनी जी फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का।